0: आवाज़ ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: नमस्ते जी प्यारे सुनने वालों, आप रेडियो उजी तोजिक हिंदी कांत को सीधे आकाश में सुन रहे हैं। बैब के साथ है शोरा न्यूज़ोवा और हमारे प्रोड्यूसर अबू मंसूर इस्माइल।
2: ताजिकिस्तान और विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर, ताज़ा और विश्वसनीय खबरें आधिकारिक सूत्र से रेडियो आवाज़ ताजिकी हिंदी विभाग से 105.5 FM में सुन सकते हैं।
1: इस घंटे की मुख्य खबरें। ताजिकिस्तान के संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने सेंट पीटर्सबर्ग शहर का दौरा किया। मॉस्को में उस्रोवानिया कुरुशी कबीर की प्रस्तुति पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। ताजिकिस्तान के राष्ट्रीय बैंक के कर्मचारियों के बीच फुटबॉल प्रतियोगिता चल रही है और अन्य समाचार हिंदी भाग को सुन सकते हैं। ताजिकिस्तान गणराज्य के विदेश मंत्री सिरोजुद्दीन मुरीदी ने यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन के महासचिव फरीदून सिनारियोलोगलू के साथ दुशंबे में बैठक हुई है। वार्ता के दौरान पार्टियों ने इस उत्सव के साथ ताजिकिस्तान के सहयोग के वर्तमान साथी और संबंधों के साथ साथ क्षेत्र सुरक्षा सीमा मजबूती, आधुनिक खतरों के प्रतिरोधा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विकास के मुद्दों पर चर्चा की। स्थिरता सुनिश्चित करने, अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने, साइबर सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास का समर्थन करने के क्षेत्रों में संयुक्त कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया गया। विदेश मंत्री ने SSCO के साथ व्यवहारिक सहयोग के महत्व पर जोर दिया और आपसी हित के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ESK और विस्तार में रुचि व्यक्त की। ICC के महासचिव ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता को मजबूत करने में ताजिकिस्तान योगदान की अत्यधिक सराहना की और रचनात्मक बातचीत और संयुक्त पहल के कार्यान्वयन को जारी रखने के लिए संगठन के तत्परता के पोषित के बैठक के नतीजे के आधार पर पार्टियों ने साझेदारी के विकास और विभिन्न स्तरों पर नियमित संपर्क बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। आज ताजिकिस्तान गणराज्य के सर्वोच्च अदालत सभा के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष फैजली दिजोदा की अध्यक्षता में संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने रूसिस्तान के सेंट पीटर्सबर्ग शहर का दौरा किया। संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल के अंतर संसदीय विधेयक सभा के परिषद के बैठकों के साथ साथ रक्षा, सुरक्षा, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मुद्दों पर स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल के अंतर संसदीय विधानसभा के स्थायी आयोगों के बैठकों में भाग लेता है। उम्मीद है कि ताजिकिस्तान गणराज्य के सुप्रीम असेंबली के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष फैजली दिजोदा संघ के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें करेंगे और संबंधों को मजबूत करने और अंतर संसदीय सहयोग का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। इस मई को रूसी संघ में ताजिकिस्तान गणराज्य के दूतावास के पहल पर रूसी विज्ञान अकादमी के ओरिएंटल अध्ययन संस्थान के सहयोग से उस्तवोनी कुरुशी कबीर की प्रस्तुति पर एक अंतर्राष्ट्रीय गोलमेज बैठक आयोजित की गई थी। इसमें रूसी के विद्वानों, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं, लेखकों, शोधकर्ताओं के साथ साथ दूतावास के तहत सार्वजनिक परिषद के सदस्यों और रूस में ईरानी दूतावास और मॉस्को में रजनायक कोर के कर्मचारियों की एक विस्तृत श्रृंखला ने भाग लिया और बात की।
3: व
1: ویش فوتبال دیواز که سامان می نیویورک می ایه که هیل پروژگیتا یو جید که گایه ویش فوتبال دیواز 2024 سامانانه که لیه نیویورک می سنیونگ راشتر که موکی آلای می ایه که ویشیش فوتبال تورنومیت ایو جید که یاگه تا سنیونگ راشتر که سادسه دشو که سایه می شانو که اوچا جا پدسته رجنایی کونه می ترتا اور منتری پور پرتیس پرده که بحاونازه ایه سکر اکرام بحاگلیا پرتی مندالو که آدی آخش سادسه اور پرشنسانونه گرسی آپنه دشو که راشا فوتبال ورده پهنی جیساسه ایک خوشحال اور اوچاوکا محول میترتا اور آشترا که ایک تا بنی سبی پرتی باگیونی سنواد آبسی سامان اور کهیل که ایکی کراد شکید سهید سنیونگ راشتر که ستایی سیدهانتو که انوسار کهیل بحونا که اوچاوکا آنند لیا. تورنومیت که پنمسفرو بشایی پرشانسن سامون جیون حاصل که اور لگتر دوسره ورش سنیونگ راشتر ویش فوتبول دیواز پروسکارسی سامانیت کیا گیا پیروس نوالوی تستایی سمچر همارے دوسرے پرسارن جا رہی ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہی ہے

प्यारे श्रोताओं, आज के प्रोग्राम में आपको एक गाने के बारे में बताते हैं जो न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। ये गाना शोले मूवी से है, जिसको न केवल हिंदी गायिका बल्कि ताजिक गायिका ने भी गाया है। शोले फिल्म के गानों में से एक है हाँ जब तक है जा, जो कम समय में लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गया। वो कहता है हाँ जब तक है जा, जाने जहाँ मैं नाचूंगी।

हाँ, जब तक है जहाँ जाने जहाँ मैं नाचूंगी, प्यार कभी भी मरता नहीं, मौत से भी ये डरता नहीं, लुट जाएंगे, मिट जाएंगे, मर जाएंगे हम, जिंदा रहेगी हमारी दास्तां।

बॉलीवुड की हिट फिल्मों में से एक शोले ने सफलता के कई रिकॉर्ड बनाए हैं। शायद ही कोई ऐसी फिल्म होगी नहीं जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी सराहना मिली हो। इस गाने के बारे में जानकारी देने से पहले मूवी के बारे में बताते हैं। शोले मूवी सन 1974 की एक भारतीय हिंदी एक्शन फिल्म है। सलीम जावी द्वारा लिखी इस फिल्म का निर्माण गोपाल दास सीपी ने और निर्देशन का कार्य उनके पुत्र रमेश सीपी ने किया है। शोले फिल्म 14 अगस्त 1974 को भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुंबई में रिलीज हुई। नकारात्मक समीक्षा और प्रभावी प्रचार की कमी के कारण शुरू के दो सप्ताह तक ये फिल्म कुछ खास नहीं चली। हालांकि सकारात्मक मौखिक प्रचार के चलते तीसरे सप्ताह से इसके दर्शक बढ़ने लगे। शुरुआती हफ्तों में फिल्म की धीमी कमाई अवधि के दौरान निर्देशक और लेखक ने फिल्म के कुछ दृश्यों को फिर से फिल्माने पर विचार किया ताकि अमिताभ बच्चन का चरित्र मर ना सके। हालांकि जैसे ही फिल्म ने रफ्तार पकड़ी तो उन्होंने इस विचार को त्याग दिया। धीरे धीरे फिल्म के संवाद प्रसिद्ध होने लगे और इससे ये रातों रात सनसनी बन गई। इसके बाद 11 अक्टूबर सन 1974 को इसे मुंबई के बाहर अन्य क्षेत्रों में विशेषकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बंगाल तथा हैदराबाद में रिलीज किया गया। शोले सन 1974 की सर्वाधिक कमाई करने वाले फिल्म बनी और एक फिल्म रैंकिंग वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया ने इसे कमाई के आधार पर ऑल टाइम्स ब्लॉकबस्टर का दर्जा दिया है। शोले को 9 फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन एकमात्र विजेता मधाव शिंदे थे जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ संपादक के लिए एक पुरस्कार जीता। फिल्म ने सन 1976 के बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार हिंदी विभाग में भी 3 पुरस्कार जीते। अमजाद खान ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, द्वारका दिवेचा ने सर्वश्रेष्ठ छायांकन और राम येदेकर ने सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक का पुरस्कार प्राप्त किया। शोले को 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में 50 वर्षों की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के विशेष पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।

0: आवाज़ ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: नमस्ते जी, प्यारे सुनने वालों, आप रेडियो उज़ी तुजिक हिंदी कांत को सीधे आकाश में सुन रहे हैं। आपके साथ है शोरा न्यूज़ और हमारे प्रोड्यूसर अबू मंसूर इस्माइल।
2: ताजिकिस्तान और विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर, ताज़ा और विश्वसनीय खबरें आधिकारिक सूत्र से रेडियो आवाज़ ताजिकी हिंदी विभाग से 105.5 FM में सुन सकते हैं।
1: इस घंटे की मुख्य खबरें। ताजिकिस्तान के संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने सेंट पीटर्सबर्ग शहर का दौरा किया। मॉस्को में उस्रोवानिया कुरुशी कबीर की प्रस्तुति पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। ताजिकिस्तान के राष्ट्रीय बैंक के कर्मचारियों के बीच फुटबॉल प्रतियोगिता चल रही है और अन्य समाचार हिंदी भाग को सुन सकते हैं। ताजिकिस्तान गणराज्य के विदेश मंत्री सिरोजुद्दीन मुरीदी ने यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन के महासचिव फरीदून सिनारियोग्लू के साथ दुशंबे में बैठक हुई है। वार्ता के दौरान पार्टियों ने इस उसी के साथ ताजिकिस्तान के सहयोग के वर्तमान साथी और संबंधों के साथ साथ क्षेत्र सुरक्षा सीमा मजबूती, आधुनिक खतरों के प्रतिरोधा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विकास के मुद्दों पर चर्चा की। स्थिरता सुनिश्चित करने, अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने, साइबर सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास का समर्थन करने के क्षेत्रों में संयुक्त कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया गया। विदेश मंत्री ने SSCO के साथ व्यवहारिक सहयोग के महत्व पर जोर दिया और आपसी हित के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ESK और विस्तार में रुचि व्यक्त की। ICC के महासचिव ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता को मजबूत करने में ताजिकिस्तान योगदान के अत्यधिक सराहना की और रचनात्मक बातचीत और संयुक्त पहल के कार्यान्वयन को जारी रखने के लिए संगठन के तत्परता के पोषित के बैठक के नतीजे के आधार पर पार्टियों ने साझेदारी के विकास और विभिन्न स्तरों पर नियमित संपर्क बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। आज ताजिकिस्तान गणराज्य के सर्वोच्च सभा के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष फैजली दिजोदा की अध्यक्षता में संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने रूसिस्तान के सेंट पीटर्सबर्ग शहर का दौरा किया। संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने स्वतंत्र राज्यों के रक्षामंडल के अंतर संसदीय विधानसभा के परिषद के बैठकों के साथ साथ रक्षा, सुरक्षा, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मुद्दों पर स्वतंत्र राज्यों के रक्षामंडल के अंतर संसदीय विधानसभा के स्थायी आयोगों के बैठकों में भाग लेता है। उम्मीद है कि ताजिकिस्तान गणराज्य के सुप्रीम असेंबली के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष फैजली दिजोदा संघ के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें करेंगे और संबंधों को मजबूत करने और अंतर संसदीय सहयोग का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। इस मई को रूसी संघ में ताजिकिस्तान गणराज्य के दूतावास के पहल पर रूसी विज्ञान अकादमी के ओरिएंटल अध्ययन संस्थान के सहयोग से उस्तवोनी कुरुशी कबीर की प्रस्तुति पर एक अंतर्राष्ट्रीय गोलमेज बैठक आयोजित की गई थी। इसमें रूसी के विद्वानों, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं, लेखकों, शोधकर्ताओं के साथ साथ दूतावास के तहत सार्वजनिक परिषद के सदस्यों और रूस में ईरानी दूतावास और मॉस्को में राजनयिक कोर के कर्मचारियों की एक विस्तृत श्रृंखला ने भाग लिया और बात की। ویش فوتبال دیواز که سامان می نیویورک می ایه که هیل پروژگیتا یو جید که گایه ویش فوتبال دیواز 2024 سامانانه که لیه نیویورک می سنیونگراشتر که موکی آلای می ایه که ویشیش فوتبال تورنومیت ایو جید که یاگه تا سنیونگراشتر که سادسه دشو که سایه می شنو که اوچا جا پدسته رجنایی کونه می ترتا اور منتری پور پرتیس پرده که بحوناسه ایه سکرکرام بحاگلیا پرتی مندالو که آدی آخش سادسه اور پرشنسانونه گرسی آپنه دشو که راشا فوتبال ورده پهنی جیسا سه ایک خوشحال اور اوچاو که محول میترتا اور آشترا که ایک تا بنی سبی پرتی باگیونی سنواد آبسی سامان اور کهیل که ایکی کراد شکید سهید سنیونگر آشتر که ستایی سیدهانتو که انوسار کهیل بحونا که اوچاو که آنند لیا. تورنومیت که پنم اسفارو بشایی پرشانسن سامون جیون حاصل که اور لگتر دوسره ورش سنیونگر آشتر ویش فوتبول دیواز پروسکار سه سامانیت کیا گیا پیروس نوالوی تستایی سمچار هماری دوسری پرسارن جاره یا هماری دیدیو که سات رایه

0: चटकसायों का विस्तार मित्रता पूर्वक संबंधों को मजबूत करने तथा साहित्य और सांस्कृतिक संबंधों के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के सांस्कृतिक दिनों के हिस्से के रूप में दोनों देशों के सांस्कृतिक मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की गई है। राजा रहमानोव ने कहा,
1: روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرغیزستان ضمن مراسم ابراز گردید که خلقهای تاجیک و قرغیز را دوام عصرها مناسبت‌های حسنی همجواری نزدیکی معنوی و همکاری‌های چندین ساله فرهنگی
0: تاجیکستان که سانسکرتیک دیواسو که دوران قرغیزستان می آیوجید سمارو می یه ویاخت که اگر که تاجیک و قرغیز لوگون کو سادیو سی اچه پروسی سمباند اتی اتی ماگ نکتا اور لمبی سمای سی چلی آرائی ہے سانسکرتیک سایوگ آپاس میں جورتے آئے ہیں یہ بھی ہے زور دے کر کہا کہ سانسکرتیک لوگوں کے بیچ مترتا آپ سے سماج اور ویشواس کو مضبوط کرنے کے سب سے مطوپور مدیم ہے تتہ سانسکرتیک دیواسو کا یو جن دونوں دیشوں کے بیچ مناویہ سایوگ کے آگے ویکاس میں سایاگ سیدھاند ہوتا ہے ساتھی ایسے کرکرام राष्ट्रीय मूल्यों के परिचय सहित और सांस्कृतिक संबंधों के विस्तार तथा तजिकिस्तान और किर्गिस्तान के मंत्रिपूर्ण संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रतिभागियों ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता और सांस्कृतिक सहयोग राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक संबंधों के स्थायी विकास के लिए एक मजबूत आधार है। किर्गिज गणराज्य में तजिकिस्तान गणराज्य के सांस्कृतिक के दिनों के हिस्से के रूप में जी के नाम पर किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रीय ललित कला संग्रहालय में तजिकिस्तान गणराज्य के ललित कला के प्रदर्शनी एटीव में आयोजित की गई थी और प्रसिद्ध तजिक ललित कलाकारों के साथ साथ युवा कलाकारों के कृतियों को प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया था। मेहमानों के दयान के लिए पेंटिंग और ग्राफिकास का एक अनूठा संग्रह प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत कार्यों में तजिक पारो के शानदार परिदृश्य लोगों के जीवन के दृश्य और पारंपरिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत राष्ट्रीय व्यवसाय और तजिक लोगों के अत्यधिक मूल्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही इन दिनों ये सम्मेलन किर्गिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति फिलहारमोनी के बड़े हॉल में जारी रहा। कार्यक्रमों का आयोजन सांस्कृतिक कला साहित्य और सिनेमा के क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है और सांस्कृतिक आदान प्रदान और रचनात्मक संवाद के लिए अनुकूल आधार प्रदान करता है। तजिकिस्तान गणराज्य के सांस्कृतिक मंत्रालय के प्रेस केंद्र के प्रमुख इराजा रहमतोव ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य दोनों देशों के लोगों के बीच मंत्रिपूर्ण संबंधों का विस्तार करना है। उल्लेखनीय है कि तजिकिस्तान गणराज्य के सांस्कृतिक दिवस को किर्गिज गणराज्य में आयोजित करना दोनों भाईचारे वाले राज्यों के बीच मित्रता और अच्छे पड़ोसी के माहौल को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि सांस्कृतिक लोगों के बीच दोस्ती आपसे समाज और विश्वास को मजबूत करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। सांस्कृतिक दिवस आयोजित करने से दोनों देशों के बीच सहयोग और विकास में योगदान मिलेगा। نیوز و شویرا ریدیو اوز توجیک

प्यारे श्रोताओं, आज के प्रोग्राम में आपको एक गाने के बारे में बताते हैं जो न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। ये गाना शोले मूवी से है, जिसको न केवल हिंदी गायिका बल्कि ताजिक गायिका ने भी गाया है। शोले फिल्म के गानों में से एक है हाँ जब तक है जा, जो कम समय में लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गया। वो कहता है हाँ जब तक है जा, जाने जहाँ मैं नाचूंगी।

हाँ जब तक है जा जाने जहां मैं नाचूंगी प्यार कभी भी मरता नहीं मौत से भी ये डरता नहीं लुट जाएंगे मिट जाएंगे मर जाएंगे हम जिंदा रहेगी हमारी दास्तां।

बॉलीवुड की हिट फिल्मों में से एक शोले ने सफलता के कई रिकॉर्ड बनाए हैं। शायद ही कोई ऐसी फिल्म होगी नहीं जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी सराहना मिली हो। इस गाने के बारे में जानकारी देने से पहले मूवी के बारे में बताते हैं। शोले मूवी सन 1974 की एक भारतीय हिंदी एक्शन फिल्म है। सलीम जावी द्वारा लिखी इस फिल्म का निर्माण गोपाल दास सीपी ने और निर्देशन का कार्य उनके पुत्र रमेश सीपी ने किया है। शोले फिल्म 14 अगस्त 1974 को भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुंबई में रिलीज हुई। नकारात्मक समीक्षा और प्रभावी प्रचार की कमी के कारण शुरू के दो सप्ताह तक ये फिल्म कुछ खास नहीं चली। हालांकि सकारात्मक मौखिक प्रचार के चलते तीसरे सप्ताह से इसके दर्शक बढ़ने लगे। शुरुआती हफ्तों में फिल्म की धीमी कमाई अवधि के दौरान निर्देशक और लेखक ने फिल्म के कुछ दृश्यों को फिर से फिल्माने पर विचार किया ताकि अमिताभ बच्चन का चरित्र मर ना सके। हालांकि जैसे ही फिल्म ने रफ्तार पकड़ी तो उन्होंने इस विचार को त्याग दिया। धीरे धीरे फिल्म के संवाद प्रसिद्ध होने लगे और इससे ये रातोंरात सनसनी बन गई। इसके बाद 11 अक्टूबर सन 1974 को इसे मुंबई के बाहर अन्य क्षेत्रों में विशेषकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बंगाल तथा हैदराबाद में रिलीज किया गया। शोले सन 1974 की सर्वाधिक कमाई करने वाले फिल्म बनी और एक फिल्म रैंकिंग वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया ने इसे कमाई के आधार पर ऑल टाइम्स ब्लॉकबस्टर का दर्जा दिया है। शोले को 9 फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन एकमात्र विजेता मधाव शिंदे थे जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ संपादक के लिए एक पुरस्कार जीता। फिल्म ने सन 1976 के बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार हिंदी विभाग में भी 3 पुरस्कार जीते। अमजाद खान ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, द्वारका दिवेचा ने सर्वश्रेष्ठ छायांकन और राम येदेकर ने सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक का पुरस्कार प्राप्त किया। शोले को 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में 50 वर्षों की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के विशेष पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।

कोई हसीना जब रुझ जाती है महबूबा महबूबा ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे हाँ जब तक है जा होली के दिन दिल खेल जाते हैं इस मूवी के गाने हैं शोले का गाना जब तक है जा गाने का गायक लता मंगेशकर संगीतकार राहुल देव बुर्मन गीतकार आनंद बख्शी कलाकार हेमा मालिनी धर्मेंद्र अमजाद खान हैं इस गाने में हेमा मालिनी ने एक अच्छा डांस भी किया है जिसको लोगों ने पसंद की थी नोजिया करमतलो प्रसिद्ध ताजिक गायिका है जिसको न केवल ताजिकिस्तान बल्कि दूसरे देशों में भी सुनकर पसंद करते हैं विशेष रूप से हिंदुस्तान में नोजिया करमतलो ने भारत में संगीत सीखी थी और भारत में रहते समय इस कला को बारीकी से अध्ययन किया था अपने पहले कॉन्सर्ट में उसने कई हिंदी गाने दर्शकों के लिए पेश की थी जिनको लोगों द्वारा पसंद किए गए उनके बाद नोजिया ने दूसरे हिंदी गाने पेश करने लगे जो न केवल हमारे देश में बल्कि हिंदुस्तान और हिंदी गानों के प्रेमियों के बीच मशहूर हो गए हिंदी गानों में से एक हाँ जब तक है जाने जहाँ है जिसका एक पार्ट आप पेश करेंगे